0: क्यूआर संगे
1: नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: रेडियो भेरी एफएम

6.9 को शानदार डिस्प्ले, AI powered camera, 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनाओ सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों
1: कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना कुंवर कफी तथा फलफूल फर्म गुरबाकोट 14 सुर्खेतका लागि बिरुवा गोडमेल र मलजल गर्ने 4 जना कर्मचारी आवश्यक परेकोले इच्छुक व्यक्तिले छिट्टै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क व्यक्ति पूर्ण कुंवर ढाका टोपी दाई मोबाइल नम्बर 98681033333 र 97031333333।
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 रेक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज।

0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वेक्सी 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 1 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: 6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्न बारम्बार
1: सबैको मन सुने
2: रेडियो भेरी FM।

0: संगे नेपाल पेट्युबार में आवद हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पेक्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पेक्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर
1: अब सुनोस श्री स्टील्स रेडियो कथा भाग दुई शर्माजी को परिवार सबैले डराएका हुन्छ तर त्यति ठूलो भूकम्प आएर हल्लाएको त्यो घरलाई केही हुँदैन यसरी नै दिन महिना वर्ष बित्दै जान्छ अनि एक दिन फेरि अचानक ठूलो भूकम्प आएर त्यो श्री एफई 550D ले बनाएको शर्माजीको घरलाई झन् धेरै हल्लाउँछ रेडियो सुन्दै गर्नुस् अब बाँकी कथा अर्को भागमा श्री एफई 550D सर्वोत्कृष्ट भूकम्प प्रतिरोधक स्टील
2: सबैको मान सुने
3: रेडियो भेरी एफएम

0: पे QR संगे
1: नेपाल पे QR में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट IPS ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे QR में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे QR नेपाल के अपने QR

0: 6.9 inch को शानदार डिस्प्ले, AI powered कैमरा, 2 वर्ष को वारंटी सहित, Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh powerful बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषता हरुले तपाईको मन जित्न बारम्बार।
1: Radio Veri FM, Radio Veri FM,
2: Radio Veri FM, 98.6, वैक्सी 2.7 MHz.
3: Extreme energy drink. Time check.

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

नेपाल पे क्यूआर में आबद हुई क्लर्क आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

दीक्षितलाई सुखदेवले गंगा जी को जल अत्यंत पवित्र पानी जो कपिल देव आश्रम गंगा सागर सारे तीर्थ बारम्बार गंगा सागर एक बार सारा तीर्थ जब गंगा सागर में जब जान तेस दिन में जम्मा महाराज भगवान कपिल देव एक रात बिमजी बस्त जम्मा 24 घंटा अरु टाइम सारा सुती बस् तर एक रात बिउजी का बेला में सारा 33 कोटी देवता दर्शन कर मागे संक्रांति का दिन में भगवान कपिल को सान्निध्य में पुग्ने होना को कारण उन्हें कपिल देव भगवान को दर्शन करी गंगा सागर को संपूर्ण विश्वभरी को नेपाल पिउने भारत वर्षभरी को अपवित्र पावन जल ती समायोजन ती गए स्नान कर पवित्र हो शरीर पवित्र बनाने यही मूल सिद्धांत बन राजा परीक्षित सुखदेव ने बताई बस बाकी अंश को लगी तप के सुन्न चाही बस्ने महाराज परीक्षित का प्रतिमा सुखदेव स्वामी ने बताने भो रही सगर नामी का राजा का छोरा कुल माधव राजा का ना सगर हूं अंजसुमान अंशुमान दिलीप भगीरथ थे उनका वंश में भरद्वाज उनका वंश में महान रघु नाम का राजा पैदा भैया महाराज रघु को कुल खटवांग खटवांग का कुल में रघु रघु बने को माछा को कुल उनका वंश में अज अज नाम का राजा का छोरा दशरथ उनका तीनटा रानी में छोरा न भर छोरा पाउने एक ही प्रयोजन कराउँदै हुनुहुन्छ राजा दशरथ भन्ने सम्बन्धको कथा यस अध्यायबाट बताउनु भयो। यसै प्रसंगमा सौन कादृशी प्रणाली एक दिन महान प्रतापी अर्थात दशरथ राजाको तीनटा रानी छोरा थिएनन् एक एक गरे एक एकको प्रतापबाट पायस र चरु आयो। आइसकेपछि जेठी महारानी का गर्भबाट यज्ञ को प्रताप ने पुत्र पैदा हुनुभयो। साक्षात्कार भगवान पर ब्रह्म परमात्मा को सातों अवतार जय बोलो राम अवतार भगवान को अने रामचंद्र प्रभु प्रादुर्भाव हुई बक्सु कई कई बच्ची का गर्भबाट भरत सुमित्रा पायस का मत बाट इनको मत राम लक्ष्मण भारत में शत्रुघ्न मिलना जानु भो। यसै प्रभावले गरिकन राजा रामचंद्र परमात्मा परमेश्वर जगत को नारायण आज जनकपुर धाम सवारी हुनु बला अति बला विद्या लक्ष्मण ने पढ़् जनकपुर धाम में गए सीता माईलाई शिवधनु तोड़े विवाह कर उर्मिला का साथ में लक्ष्मण ने मांडपी श्रुतकृति का साथ में श्रीध्वज राजा की छोरी का साथ में क्रमश भरत शत्रुघ्न ले सारा विवाह भई सके रामचंद्र परमात्मा दरबार में सवारी हुनु यहां पातालो कथा हुन्छ महाराज दुई अध्याय सारा सक्नु पर्छ है। यसै कारणबाट रामचंद्र परमात्माले बडो रमाइलो सासँग घरमा विराजमान हुँदा पिताजीले रामलाई राज्य दिने अघि प्राय विचार गर्नु तर सौतने आमाले पूर्ववत थाती दुईटा वरदान माग्नु रामलाई जंगलमा बास 14 वर्ष मेरो छोरो भरतलाई राज्य गद्दी। यसो हुँदा राजा दशरथ मूर्छा पर्नु रामचन्द्र जंगल जान तयारी हुनु पिताजीको वचनलाई तयारी गर्दा सारा पूर्ववासीले भन्नु नजाऊ वनमा राम सीता लक्ष्मण।